मेहता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक हुए है।

ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए तां परमात्मा दा रूप है। सात सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैं तां कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नूं इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नूं मैं तां कालू नूं वधाइयां मिल रहियां हन कि अज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर गया है। प्यारी सात संगत, आ बालक पता है कौन है? ए बालक आप नारायण कला तार जग में परवरे हो। आप नारायण दा रूप

तन जियो तैको जग में, तन जियो तैको जग में, मुक्ते हर चित्त में युद्ध विचार। देह

बुद्ध सदीप जो उजियारे ज्ञाने की बढ़ने मनो हाथ ले ज्ञाने की बढ़ने।

0: कितनी ही सेवा प्रवान कर दी अब करके बताइए वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की जय।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day.

जिथे तेरी सांझ बनी उथे मेरी भी सांझ बना दे। मैं अपने मन की अवस्था उन्हां कोल आखां जिहड़े तुरे होए ने पहुंचे होए ने इस मार्ग ते जिन्हां ने चार कदम तय किए हुए मंजिलां मारदे तुरे जा रहे ने जे ते उह जिहड़े मंजिलां मारदे जा रहे ने साहिब कहिंदे ने अखाउंदे ही नहीं केवल उह की करदे ने उद्दम करे भलके प्रभाती अमृत वेले। प्रभात का मतलब है सूरज चढ़न तो बहुत पहला डान ते मारन विच फर्क है। जिसने सूरज चढ़दा है उसनू डान कह देने लेकिन सवेरा इस तो पहला सवेरा का मतलब होंदा है चंगा वेला सवेला। सूरज चढ़न तो बाद जिहड़ा बंदा भगती की गल सोचता है ना वह कवेला कर बैंदा सवेरा जिन्हां ने सामना है वह अमृत वेले। सूरज चढ़न तो बहुत पहला पहला अपना काम नबेड़दे ते जिहड़े इस मार्ग ते तुरे हुए ना भाई साहब तो बड़ी खूबसूरत गल कही। भाई साहब कहिंदे ने ऐसे लोग जिहड़े गुरु मार्ग ते अमृत वेले तुरदे रहे मेरा तो जी करदा है उन्हां दे चरणां दी खाक हो जा। नख सिख लो नख पैरां दा नहु नख सिख सिर दी चोटी नख सिख लो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखण के चरण पैवाए। कट कट के मेरा शरीर सिखां दे चरणां तों निछावर कर दे वारने कर दे कहते ने अग्न जलाए हुन पीसन पिसाए ते चक्की च पी दे अग च भुन दे लै उडे पौन होए अनक प्रकारिए तरह तरह नाल हवा विच उड़ा दे उस हवा विच मेरे शरीर की खाक उड़ जावे। फिर कहते ने जत कत सिख पग धरे गुरपंथ प्रात सवेरे सवेरे जिहड़े जिहड़े रस्तियां तो गुरु के सिख गुरु चरणा वल तुर के आउंदे ने जिहड़े जिहड़े रस्तियां तो गुरु के सिखां दे चरण गुरु के सिखां दे पैर गुरु चरणा वल गुरु द्वारे वल वधदे ने ताहू ताहू मार्ग मैं भस्म को डारीए मेरे शरीर की वह भस्म जिहड़ी उहनां उहनां रस्तियां ते फैला दे उन्हां उन्हां रस्तियां ते विछा दिओ मेरे शरीर नूं सुआह करके भस्म करके तेहे पद पादक चरण लिव।

कत हूँ सुचे तुह के चेतना को चार किया, कत हूँ अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साढ़े हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलती है उसनों मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने पाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नू दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़के कह दिओ आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दिया, हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। ये पहल तूं करनी है। प्यार असां देना है, लैणा नहीं। देवे तां ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए। ना भाई, वह नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी, भावें कोई मोमन वेख रहा है, भावें कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया एक कोई पुकार है केड़ी।

गायत्री को गुपत जप्यो, कौं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत, कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो, काऊ बेदरीत काऊ तांस्यो बपरीत, काऊ त्रिगुण अतीत काऊ सर।

देत हो, कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

पावक में अर पवन हूँ मैं, पृथ्वी तल में सुकहाने जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा माणा में माणे तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

तेरा खेल अखाड़ा जियो। तुर बिन दूजा और न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना तो प्रभु जी पास। सब कुछ किता तेरा वरते, सदा सदा तेरी आस। जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई।

जन को तब अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी हा मतलब परवान चरण शरण हम अनाथ नाथ हरकनी अपनी कृपा करे चल कमल नानक आला दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

तन जियो ते को जग में, तन जियो ते को जग में, मुक्ते हर चित्त में युद्ध विचार।

आत्मरस जाने है, मेरे विच ओदे विच ते रब विच कोई फर्क नहीं। बंदा इन्ना भी उच्चा उठ सकता है कि कलगी धर दी समानता कर सके, निरंकार की समानता कर सके, कर सकता है। साहब कहते ने जिन जाता सोते से ही जे आ, जेड़ा वाहिगुरू जान लैंदा ओदे वर्गा ही हो जाता। जिन्हां नूं आत्मरस आए, इत्थे महाराज ने आत्मरस की गल की, खोजत खोजत खोज विचारे हो, बड़ा लभिया, लोगों ने रस्ते मारिया ने, दुनिया से भटक भटक के स्वाद के टिकाने लभण का यतन किया। पर कहिंदे ने असल सारिया तो स्वादला रस, सदा टिकिया रहने वाला रस, परेशान ना करने वाला रस, दूजे रस बंदे नूं परेशान कर दे। मनुख नूं टिकाओ ते शांति चैन बख्शन वाला रस, किल विख काटे निमुख आराधे गुरमुख बार उतारा, उन्हां रसां ने बंदे नूं पापी बना दिता कई बार, नाम रस ने बंदे नूं देवता बना दिता, पाप धो दिते ने। किल विख काटे निमुख आराधे गुरमुख पार उतारा, गुरमुख इस रस नूं लैंदा होया इस जिंदगी विचों सुरखरू होके जांदा, मुक्त हो जांदा। प्रेरणा बख्शिश कीती, हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, समझदार बंदे हो, वह रस लैण दा यतन करो। सुन सुन महा तृप्त मन पावे, उन्हां रसां नूं लैके बंदा कदे रजिया नहीं, कई बारी भुख वधदी फिर भी अतृप्त रहिंदा है, सुंघण वाला सुंघदा भी रहिंदा है फिर भी अतृप्त रहिंदा है, कोई भुख होर बनी रहिंदी, सुनदियां दी भुख कोई होर भी बनी रहिंदी, बल्कि कई बारी सुन तो तंग भी आ जांदा है, कोई होर भुख जाग पैंदी। ते जिस नूं नाम दा रस आ गया, भगती दा रस आ गया, बाणी दा रस आ गया, ओ रस छाडे, इह रस आवा, इह रस आवा, ओ रस नहीं पावा। जदो ये स्वाद आ जावे, तुसां वेखिया आम साई लोग, रब दे बंदे, प्यार वाले संत भगत जन प्रसाद दा आदक बड़ा सधारण छकदे। की वजह है? क्योंकि उन्हां नूं रस किधरों होर दिओ आ रहा है, स्वाद स्वाद उन्हां प्रसादे चों नहीं लैणा, रोटी विचों स्वाद नहीं भालदे, किधरों होर दो स्वाद लै रहे, उन्हां नूं रस अंदरों आ रहा है, वह अखां बार बार के इधर उधर नहीं वेखते, क्योंकि उन्हां नूं वेखण चों रस नहीं आ रहा, अंदरों कोई रस आ रहा, वह कच्चे पक्के संगीत का रस लैण का यतन नहीं करते, गंदे गंदे गाणियां नूं सुन के रस लैण का यतन नहीं करते, उन्हां दे अंदर रस टिकिया होया, कोई अंदरों रस फुट रहा उन्हां दा। उन्हां मस्तियां नाल भरे बंदियां दी गल है, सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी, अमृत बाणी नूं सुन सुन के, जप जप के, आराध आराध के, विचार विचार के पक्की तृप्ति महा तृप्ति प्राप्त करदे ने। ते जिन्हां ने इस रस नूं लैण दा यतन कीता है, साहब कहिंदे ने, ओह ऐसा भी करदे ने, श्रवणी सुनिए रसना गाइए हिरदय त्याई सोई, कन्ना नाल सुनते ने वाहगुरु की गल, जीवा नाल जपते ने वाहगुरु का नाम, हिरदे विच याद करते ने वाहगुरु, श्रवणी सुनिए रसना गाइए हिरदय त्याई सोई, करण कारण समर्थ स्वामी जानते बिरथा ना कोई, ओ सच्चे वाहगुरु नाल जुड़न वाला बंदा कदे निराश नहीं होया। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ, ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਵਾਦਾਂ ਚ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲਾ, साध संग नानक गुण गावे सिमरे सदा गोपाला, मेरे साहब मेरे ते रहमत करो, मैनू ये रस आ जावे, मैनू ये स्वाद आ जावे, तेरा सिमरन हिरदे च वस जा, सत्संगियां नाल रल के मैं तेरा जस गावां ते इहदे विचों रस मैनू आ जा, ये रस आ जावे ना। धन गुरु नानक ने मरदाने नूं एक गल कही सी, भाई मरदाना कहन लगा, पातशाह साहब तां ओह नजारा कर रहे ने मलक भागो दियां, उन्हां पकवाना पूड़ियां विचों साहब लहू कढ के दिखा रहे, भाई लालो दे कोधरे विचों दुध कढ के विखा रहे, ते भाई मरदाना तां कोल बैठा सी, उन्हें दो चार बुरकियां मलक भागो दियां भी पा लईयां सन, उन्हें इहदा भी रस लिया सी। धन गुरु नानक नूं कहण लगा, पातशाह तुसीं तां अपने तौर ते साबित कर रहे हो किहड़ा ठीक है ते किहड़ा गलत है, पर जे मैं तुहानूं सच्ची गल हिरदे दी दसां, सुनन वाले सुन रहे ने, धन गुरु नानक कहण लगे, मरदाने दस हिरदे की गल दस,
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਭੋਜਨ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਸ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਸਵਾਦ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਕੋਧਰੇ ਜਾਂ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੇ ਖੇਚਲ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚ ਰਸ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਸ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਸ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ

जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो सहज आनंद रखियो गृह पीतर उठ उहाहु को दौर्यो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सोग हरख नहीं जा।

वर्णन करने वास्ते। मेरे धन गुरु नानक जीओ, तेरे ता गुण की दसे जा सकने ने, बल्कि इथों तक तारे गणे जात हैं ना तारे गिने जात हैं। आकाश के तारे तो गिन लईए, जिन्हां नूं तू तारे आ उन्हां दी गिणती नहीं हो सकती। तेरे गुणां दा वर्णन कौन करे, क्योंकि तू कोई साधारण तो नहीं ना मेरे साहिब जी। तू कोई जिवें साधारण लोग जमदे ने, जिउंदे ने, मरदे ने, तेरी कहानी वखरी है। तेरी कहानी वो आम साधारण कहानी नहीं है साहिब जी। आप तो वो हो रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जास, आप नारायण कला धार जग में परवरयो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करयो। इस जगत मंडल विच आप जी ओ ही ता आयो, जो जिस दे एक करोम विच करोड़ां ब्रह्मांड वसदे ने। एक गल वखरी है, आपने ओ हुंदिया होया भी मनुख स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी का, इस धरती का भार हौला करने वास्ते, इस धरती के उत्ते पए हुए पापां दे बोझ नूं हल्का करने वास्ते संसार नूं मनुख रूप च दर्शन दिते। आप ओही हो जां के ओंकार के आकार है नाना प्रकार, जो आप ता ओंकार स्वरूप हो पर आप दे ही नाना प्रकार दे आकार संसार विच पसर रहे ने, सृष्टि च पसर रहे ने। आप जी ने ही अपने पावन मुखार बिंद तो अपने स्रोतियां, अपने सिखां नूं जिन्हां ने तुहानूं समझिया है, जिन्हां ने तुहानूं जाणिया है, श्री मुख शब्द गुर सिखण सुनाए है, तुहाडे पावन मुखार बिंद तो उन्हां नूं निरंकार नाल जोड़न वाले शब्द प्राप्त होए। संसार जिस ईश्वर की पूजा करता है, यज्ञ करता है, जग भोग नई वेद जगत भगत जाहे, जिस दी भगती च संसार दे लोग सीधे असिधे तौर ते लगे ने, यज्ञ करदे ने, भोग लवांदे ने, पूजा करदे ने, उसे ने तुहाडा रूप धारण करके आप जी ओह हुंदिया होया मनुख रूप विच आ करके, शरीर रूप विच आ करके असन बसन गुर सिखण लडाए है, अपने प्यार वालिया नूं भर दिता है, भरपूर कर दिता है भोजन नाल, वस्त्रां नाल, संसार दे पदार्थां नाल। निगम शेखाद कथित नेत नेत कर, जिसनूं वेद गाउंदे ने, जिसनूं शेष नाग गाउंदा है, तरह तरह नाल नित नित जिसदा जस गाउंदे ने। गुरसिखा ने वेखिया आप ओही हो पूर्ण ब्रह्म गुरसिखन लखाए है, ओही पूर्ण पार ब्रह्म आप जी ही हो। जिथे जिथे आप जी ने दर्शन बख्शिश कीते ने, जिन्हां जिन्हां ने साहिब दे दर्शन कीते ने, पहला भावे मनुख रूप करके जाने, क्योंकि वेखण नूं आप सधारण मनुख जापदे ने, पर जदों आप वचन करदे ने तुरकी बाणी आप दे पावन मुखारबिंद तो उचारी जांदी, उदों पता लगदा नहीं ये साधारण नहीं असाधारण हन, बहुत उच्चे हन। वाह वाह बाणी निरंकार जिस मुख तो बोलदी है, उस वेले आप साधारण नहीं रह जांदे। ते फिर जिस वेले बाणी द्वारा किसी गुरसिख दे, किसी भगत दे, किसी प्रेमी दे हिरदे च आप वस जांदे हो, उदों जिहड़ी आनंदमई दशा हुंदी ओ महाराज ने वर्णन कीती अगे चल के, सगल इच मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जीओ, वाहिगुरु मिल गया मैनू। गुरु नानक दे रूप जिन्हां नूं वाहिगुरु मिलिया, गुरु नानक दे राही जिन्हां नूं वाहिगुरु मिलिया, उन्हां दे मन दी दशा साहिब वर्णन करदे। सगल इच मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जीओ, वाहिगुरु मिल गया, निरंजन राजा मिल गया। आनंद भया वड भागीओ, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जीओ, मेरे हिरदे घर च वाहगुरु जी आप पहुंच गए, आप आके वस गए। ग्रह लाल आए पुरब कमाए, पता नहीं मेरी केड़े जन्म की कोई घाल सफली हुई, जेड़ा मेरे हिरदे घर च वाहगुरु आए ने, सतगुरु आए ने, धन गुरु नानक मेरे हिरदे च वसे ने। ताकि उपमा क्या गणा, मैं उहदी की मिसाल देवा, बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता जिदा अंत नहीं पाया जांदा, जो मुकम्मल है, सुख देने वाला है, सहज बख्शिश करने वाला है। कवन रसना गुण पणा, केड़ी जीवा नाल ओदा मैं जस वर्णन करा।
ਆਪੇ ਮਿਲਾਏ ਕਹੇ ਕੰਠ ਲਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਜੀ ਉਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਿਜ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਚੈਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਕਰਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੀ ਹੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ। ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਸ ਘਰ ਦੇ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁੱਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਸਾਰੇ ਧੰਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਬੇਸਵਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 500 ਪਹਿਲਾਂ, 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪ

सतयुग सतगुर वासदेव वाह विष्णु नाम जपा। वाह अखर लिता है भगवान वासदेव तो, हा अखर लिता है द्वापर दे अवतार श्री कृष्ण जी तो, हर कृष्ण हरि तो।

मजबे की साजिशन हम चुना दर मजबे की साजिशन कज मोहब्बत बा खुदा दा रंग रंग कज मोहब्बत बा

गाह सूफी गाह जाहिद गाह कलंदर में शबद रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी मुन इंद्र महाशिव जो करी तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा।

0: छपी हो जाते माँ राजू बाबा आई पड़े सन। मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माँ तनु आंदी है।
1: हाँ सुन, हरनाक्ष नाम का एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान की भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफे पाण दा हुकम दिता। ते प्रहलाद दे दिल विचों आवाज आई पाले तत्ते थमा नु जफिया आपे तेनु रणम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पा ली पर उहदा वाल भी विंगा ना होया। उस विच आ के राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रहलाद बनांगी मां भगवान दा जाप करांगी।
2: मेरी महिला मेरी औलाद को पुठे पार पाए जा रहे। अज तो बार फिर करी ऐसी गल की थी तो मैं ऐसी सलाह दिया कि लोग हैरना किस्म भी भूल जाएंगे।